0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सेटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: या कई रोज कबल इसराइली टीवी चैनल 12 की तरफ से रिपोर्ट किए गए राय आमा के जायजे के नतीजे से पता चलता है कि लिकूद पार्टी की पार्लिमानी नशस्तें कबल अज इंतखाबात की सतह के मुकाबले में एक तिहाई से भी कम हो सकती हैं। जायजे के नतीजे से ये इशारा भी मिलता है कि अपोजिशन याशार पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। तो है कि अगले महीने के शुरू में यहूदियों की मौजूदा तातीलात खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम में तेजी आएगी।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। एनएचके को मालूम हुआ है कि जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक शहर में जुलाई में आए शदीद जल्जले के बाद बहुत से घराने इमदाद की जरूरत के बावजूद इनखला मराकज में पना नहीं ले रहे। यासुशिरो शहर के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने जुमे तक कम से कम 2000 ऐसे घरानों का पता चलाया। ये उन घरानों की तादाद की निस्बत 4 गुना से भी जायद है जो हफ्ते के रोज तक शहर के इनखला मराकज में पनागजीन थे। इस वक्त जापान में जारी 2026 एशियन गेम्स के मुंतजमीन ने खिलाड़ियों के लिए कंटेनर हाउसेस का इफ्तिताह किया है। कुछ गैर मुल्की शुरका की जानिब से इन सहूलियात में बेहतरी के मुतालबात के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। आईची नागोया एशियन गेम्स की मुंतजिम कमेटी ने इतवार के रोज रहायश गाहों की नकाब कुशाई की। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 28 सितंबर सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। एनएचके को पता चला है कि जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक शहर में कई परिवार जुलाई में आए भीषण भूकंप के बाद सहायता की आवश्यकता के बावजूद आश्रय स्थलों में शरण नहीं ले रहे हैं। यात्सुशिरो शहर के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार तक ऐसे कम से कम 2000 परिवारों का पता लगाया। ये संख्या शनिवार तक शहर के आश्रय स्थलों में शरण लिए हुए परिवारों की संख्या से 4 गुना से भी अधिक है। आश्रय स्थलों का उपयोग करने से कतराने वाले लोग भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुए अपने मकानों या अन्य स्थानों पर ही रह रहे हैं। ऐसे लोगों को अदृश्य विस्थापित कहा जाता है क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल है कि वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं और उन्हें किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है। यात्सुशिरो शहर के अधिकारियों ने मकानों का दौरा करने और राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए आश्रय स्थलों पर आने वाले लोगों से बात करने जैसे तरीकों के माध्यम से अदृश्य विस्थापितों के परिवारों की संख्या का पता लगाया। अदृश्य विस्थापितों द्वारा आश्रय स्थलों में रहने से कतराने के कारणों में कथित तौर पर लंबी दूरी एवं निजता संबंधी चिंताएं शामिल हैं। शहर के अधिकारी ऐसे लोगों को जल, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित करने की योजना बना रहे हैं। वो अन्य कल्याणकारी सहायता प्रदान करने के भी प्रयास करेंगे, जिनमें जन स्वास्थ्य नर्सों द्वारा बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के घरों का दौरा करना शामिल है। जुलाई में आए शक्तिशाली भूकंप ने यात्सुशिरो शहर को हिलाकर रख दिया था। भूकंप की तीव्रता देश के 0 से 7 के पैमाने पर 6 उच्च मापी गई थी। जापान में जारी 2026 एशियाई खेलों के आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए कंटेनर हाउस का अनावरण किया है। गौरतलब है कि कुछ विदेशी प्रतिभागियों ने इन सुविधाओं में सुधार की मांग की है। आईची नागोया एशियाई खेल आयोजन समिति ने रविवार को इन आवासों का अनावरण किया, जिनमें लगभग 2000 लोग रह सकते हैं। कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने इन आवासों में सुधार का आग्रह किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि कमरे बहुत तंग और पलंग बहुत छोटे हैं। समिति ने कहा कि वो सुधार करना जारी रखेगी और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल प्रदान करेगी। खेलों के आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही इनके संचालन को लेकर कई तरह की त्रुटियां और परेशानियां सामने आ गई थीं, जिसके चलते समिति द्वारा खेलों के प्रबंधन को लेकर विदेशी मीडिया ने आलोचना की थी। 18 सितंबर को पुरुषों के हॉकी मैच से पहले गलती से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रगान के बजाय उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया गया। समिति ने इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए माफी मांगी। संबंधित अधिकारियों ने दक्षिण कोरियाई टीम से माफी मांगी। समिति ने लिखित रूप में भी औपचारिक क्षमा याचना की। टीमों ने खिलाड़ियों को लाने ले जाने वाली बसों के कार्यक्रम में देरी और त्रुटियों का भी हवाला दिया।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के मौसम अधिकारी एक शक्तिशाली तूफान आता देख दक्षिणी द्वीपीय क्षेत्रों के लोगों से ऊंची लहरों और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। वे बिगड़ते मौसम के चलते देश के व्यापक क्षेत्रों में संभावित भूस्खलनों की चेतावनी भी दे रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे तक सुरिगे तूफान ओकिनावा प्रिफेक्चर के मिनामी दाइतोजिमा द्वीप के निकट पूर्वी पूर्वोत्तरी दिशा की ओर बढ़ रहा था। पूरे प्रिफेक्चर में तेज हवाएं चल रही थीं। सोमवार तड़के खिता दाइतोजिमा द्वीप पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज झोंके दर्ज किए गए। इस बीच शरद ऋतु के वर्षा अग्र के कारण उत्तरी से पश्चिमी जापान तक के विस्तृत क्षेत्रों में वायुमंडलीय परिस्थितियां बेहद अस्थिर हो गई हैं। मौसम विज्ञान एजेंसी लोगों से मृदा स्खलनों के प्रति अत्यधिक सतर्क रहने और वज्रपात तथा तेज झोंकों से सावधान रहने का आग्रह कर रही है। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि उसने देश के दक्षिण पश्चिम स्थित एक वायुसैनिक अड्डे के निकट 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आतंकी हमले की तैयारी करने का संदेह है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस संदिग्धों के ईरान से संभावित संबंध की जांच कर रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना को ईरानी ठिकानों पर हमले करने के लिए इस अड्डे के उपयोग की अनुमति प्राप्त है। पुलिस ने रविवार को बताया कि उसने रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड के निकट इन संदिग्धों को हिरासत में लिया। इन लोगों पर विस्फोटकों से संबंधित कानून और आतंकवाद संबंधी कानून का उल्लंघन करने का संदेह है। पुलिस का कहना है कि उसे फोन पर खबर मिली थी कि 3 संदिग्ध वाहन वायुसैनिक अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। ब्रिटेन की सरकार ने इस साल की शुरुआत में अमेरिका को ईरानी मिसाइल ठिकानों व अन्य जगहों तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने के लिए अपने अड्डों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार ईरान चेतावनी दे चुका है कि उस पर सैन्य कार्रवाई करने में जिन अड्डों का इस्तेमाल किया जाएगा वो उन सभी को निशाना बनाएगा। मीडिया के अनुसार पुलिस इस मामले के पीछे ईरान या किसी अन्य देश का हाथ होने की जांच कर रही है। इसराइल में हुए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि सत्ताधारी और विपक्षी धड़ों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव में किसी भी पार्टी के बहुमत हासिल करने की उम्मीद नहीं है। सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सितंबर मध्य में अपनी दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी की जनसभा को संबोधित किया था। कुछ दिन पहले इजरायली टीवी प्रसारक चैनल 12 ने सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए थे, जिनसे पता चला कि लिक्विड पार्टी संसद में एक तिहाई से भी अधिक सीटें गंवा सकती है। सर्वेक्षण के नतीजों से यह भी संकेत मिला कि विपक्षी याशर पार्टी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। इसराइल में इस समय यहूदी अवकाश चल रहा है

0: खेलों के आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही इनके संचालन को लेकर कई तरह की त्रुटियां और परेशानियां सामने आ गई थीं, जिसके चलते समिति द्वारा खेलों के प्रबंधन को लेकर विदेशी मीडिया ने आलोचना की थी। 18 सितंबर को पुरुषों के हॉकी मैच से पहले गलती से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रगान के बजाय उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया गया। समिति ने इसे मानवीय त्रुटि बताते हुए माफी मांगी। संबंधित अधिकारियों ने दक्षिण कोरियाई टीम से माफी मांगी। समिति ने लिखित रूप में भी औपचारिक क्षमा याचना की। टीमों ने खिलाड़ियों को लाने ले जाने वाली बसों के कार्यक्रम में देरी और त्रुटियों का भी हवाला दिया।
1: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।